0: सुनिए ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क अहिले बिहानको 7 बज्यो
1: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
0: राष्ट्रको शान किसान
1: अ कम्प्लिट पाइप
2: जाटा सीधे ले घूम जाओ से दूर देवा सुपर

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Sony FM. It's studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गरौं। ग्रस्तरी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गरौं। कारोबारमा बिल विशोक लिने र दिने गरौं। कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ। नाफाको उद्देश्य झुटा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ। वस्तु सेवाको मूल्य मात्रा म्यासकी नीति गुणस्तर एकिन गरी मात्र खरिद बिक्री गरौं। वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौं। निष्पक्ष तथा तथ्यपरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौं। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: Smart, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: を暴露させてください。
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा प्रादन क्षेत्र में घासपात काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने संपूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुने यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कृपया जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राख्नुहोस्। सुरुङ जुन बेसी उपभोक्ता समिति सुरु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्डचेक सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 9 AM बिहान 9 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: 政府を反論をしてください。
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य का क्रम में माथिल्लो सुरुंगबाट ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में नास्ता काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने सम्पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुने यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजान आशा बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदियोस्। सुनील जुन बेसी उपभोक्ता समिति।

0: कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: दैनिक सेवा ग्रहण महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदान करने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को लगी नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्व अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिख हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईने गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझे संपर्क राख् सकू
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उपलब्धता को मिलन चुकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्रो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्चल बजार बाट फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजानी ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880222 र 9842880300

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदलित व ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन न करी आपको सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क
1: कोटी पर्दी सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर पक्षी गरा में भर्ना होने संबंधी सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस को सूचना
0: विगत 35 वर्षदेखि उच्च शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संचालन व्यवस्थापन करते आईरिक साथ ही योगी दक्ष एवं अनुपति शिक्षक द्वारा अध्यापन भईर सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस में एसई शैक्षिक सत्र 2083 का कक्षा 11 में भर्ना भईरिक सबला एसई सूचना मार्फत जानकारी कराई
1: भर्ना कार्यक्रम में होने मिति
0: भर्ना म्याद यही फिर 17 गति देखि असार 15 गति सम्म कक्षा संचालन 2083 साल असार 16 गति देखि रजिस्ट्रेशन फार्म भर्ने म्याद 2083 साल असोज 20 गति सम्म पढ़ाई हुने समूह कंप्यूटर साइंस समूह कानून समूह व्यवस्थापन समूह मानविकी समूह शिक्षा शास्त्र समूह कानून समूह में 30 जना र कंप्यूटर साइंस समूह में 40 जनालाई मात्र भर्ना लिनेछ थप जानकारी को लागि संपर्क नंबर 98510 1055 छ 98141-63-5330 98424-87-75 में संपर्क कर सकूनेछ
1: उद्धव कुमार शर्मा कैंपस प्रमुख सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस सल्लेरी सोलुखुम्बु।

0: నాగరికత కొత్త సంతాలను సంబంధి సూచన అదనీ గ్రహీ మహానుభావరు యాతక్ వ్యవస్థ కరణీబాట ప్రభావం శివ ప్రాప్తికు సహజీకరణకు లాగి నాగరిక సహాయతా కక్ష సంచాలన ఉక్త కక్షబాట నిశుల్క సేవలు ప్రాప్తకున్న సక్రమేశ శివ ప్రాప్తికు లాగి నాగరిక సహాయతా కక్షబా సంపర్క రాఖ్న అనురోధ గరించ శివ ప్రాప్తిమా కసీకు ప్రలోభన నగరి ఆఫ్నో శివ లిన హార్దిక అపిల్ గర్దా శివ ప్రాప్తిమా కునే గ్రాసు ఆయన రాష్ట్ర సునీ అధికార కార్యాలయ ప్రముఖ సోజీ సంపర్క రాఖ్న సక్రమేశ కోసి ప్రదేశ సరకార ఆంతరిక మామలా తథా కానూన మంత్రాలయ విరాట్నగర
1: दीदी आज बहुनी सीमा छिटो घर आने एक्ल बस् रुचाउन दुब्राउे जानू पैला खूब पढ़ने मं अब हेन मन नौ पैला तो तस्त मं कि दुख कर कमा को पैसा बैंक में अलिअल जमा करते थो अस्थि घर को लगी कई सामान कि निकालने गो पैसा नहीं सानो सानो कुरा में किसकिस मत घरबारे बिग्रीने जस्तो पो भइसक्यो लौ मैं दीदी समझाई दून पर्यो यू तो लागौसो कोलकाता में देखिने जस्तो लक्ष्य कत लागौसो तो भाई के भएको तिमीलाई निधाती भन त
2: खै दीदी के हो साथीहरूले गाजा खाँदै जबरजस्ती गरे मैले पनि नै भन्न सकिन र खाएँ त्यसपछि बिस्तारै बानी हुँदै गयो अहिले त लट लागेछ छाट्न सकिन अहिले पनि गाह्रो भइरहेको छ
1: गाह्रो साह्रो मलाई केही थाहा छैन अब खुक्क सबै छाड्नु पर्छ तिमी त हाम्रो सहारा हो किन यसरी बर्बाद हुने काम गर्दैछौ सम्झ त हाम्रो आमा बुवाले समाजमा बनाउनु भएको जित प्रतिष्ठा छुट्टै छ यसको संरक्षक तिमीले त हो
2: हुन्छ दिदी धन्यवाद अब म सधैँ छाडेर एक असल नागरिक बन्ने प्रयास गर्नेछु मैले सेवाजीलाई पनि धेरै दुःख दिएको छु मेरो सबै थोक परिवार हो मलाई माफ गर
1: बारिशमा लग सृजना गरी दुवैसरी तुल्याउने वस्तु वा पदार्थ लागु पदार्थ वा लागु औषध हो विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागु पदार्थलाई स्वस्थ शरीरको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनेर परिभाषित गरेको छ यस्ता पदार्थले बारिशको केन्द्रीय स्थायी प्रणालीमा प्रभाव पार्नुका साथै उसको भावना र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँदछ त्यसैले लागु औषधको प्रयोग ओसार प्रसार रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड़ दिए स्वस्थ जीवन र सभ्य समाज निर्माणमा हाती मालो गरौं लागू औषध बुक्क समाज निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुलु खबु र सुलु एफएमको संयुक्त प्रयासमा जनहितमा जारी सकोस्
3: तपाईँ शिक्षण पेसामा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहनुहुन्छ बाल बालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउँदै समाज सेवा गर्ने एउटा सुनौलो अवसर
4: सोलु खुम्पु जिल्लाको सोलु दुपुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 10 तासिङ च्याङ्पा स्थित ओमछु आधारभूत माध्यमिक विद्यालयका लागि एकजना दक्ष अंग्रेजी शिक्षकको आवश्यक परेको हुँदा यसै सूचना मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ
3: सेवा सुविधाहरू खाने बस्नेको सुविधा विद्यालयद्वारा नै उपलब्ध गराइनेछ

0: लू एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफ एम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM सात को 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंबू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Surya FM. Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वरामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्द नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
3: टाइम चेक सुरिया फिल्म स्टुडियो टाइम
0: 7 पीएम
4: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वरामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्द नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: न्यूज चार कलरिया तथा सोलह मई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनोद खुम्बू नगर पालिक पांच सलेरी स्कूल खुम्बू विगत देखि ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यूज चार कलरिया तथा सोलह मई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवाहर का साथ में सब सुंद हमारा सेवाहर प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल लेटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाई बीपीआर कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल का तार पाई सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गई सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवेवन मुहाने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण कर हार्डवेयर का संपूर्ण सामान कांटी कब्जा छेक्की तालछा वाल मिक्सचर मोनी सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन कंपनी के मूल्य में पाइन ये सब मरम्मत गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को टैंकी कलर यति मात्र होइन सलेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशप गैस सिलिंडर गैस सुनो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203389 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841902549 न्यू स्टार कलरिया तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सलेरी स्कूल खुम्बू
1: हाम्रो के दोष सर पक्रिनु भएको सर
2: बाल विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई के दोष छ भनेर हुन्छ
3: हामी त जन्ती गएका त हौ सर
2: त्यही त कुरो बिग्रियो बाल विवाह भएको हुन लागेको कुरा त देखेपछि रोक्नु पर्ने हो नि त उल्टे जन्ती जाने भोज खाने अनि पक्राउ परिन्न त
1: तिनकै बाबुआमालाई पक्रिनु न सर हामीलाई छाडिदिनु
2: तिनका बाबामा पक्राउ परिसक्यो ती त अब तीन महिना जेल बस्छन्
3: तिनलाई पक्रिहाल्नु भएछ अब यसरी बाल विवाह गर्न दिन्न सर गाउँ घरमा एकपटकलाई छोडिदिनु सर
2: अब कानूनले त्यसो भन्दैन बाल विवाह गराउने लौनीदेखि जन्तीसम्मलाई एक महिना कैद हुन्छ भनेको छ अब यो थुन्ने र छन्ने काम पुलिसको होइन अदालतले गर्छ चुप लाएर बस्नुहोस्
0: बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी नेपालको जनहितमा जारी सन्देश

जीवन बलि कई हो मित्रा चाहे खूब उजालो कहीं झुकई हो जीवन बलि कई हो मित्रा चाहे खूब उजालो कहीं झुकई हो दिन उन्हीं झुल की रानी लाए आज मन उड़े रवाचा मलाई आज मन उड़े रवाचा मलाई है उनके नजीक जाऊं संग माया लाऊं उनके नजीक जाऊं संग माया लाऊं उनके नजीक जाऊं।

0: पूर्ण FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में डिजिटल कलर तथा ध्वरामय अफसेट प्रेस सोलु दुकुंड नगर पालिक 5 सोलु खुम्बू।